0: अधिकारी के अनुसार भाष्य को सड़क को भित्ता तर्फ करना ट्रैक निर्माण को काम सही नहीं सकता है। धादिंग का प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मी पांडे
1: धादिंग जिला को
0: सवारी चल्ने

व्यवस्था करेगा, सरकार ने नया कानून को प्रस्ताव करेगा उल्लेख कर भारत फ्रांस पर्यावरणीय संपदा शीर्षक वार्ता प्रवास पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने उत्तर को हिमालय और चीन को साझा संपदा का रूप में हेन्न पर्ने जोड़ काठमंड में हिजो शुरू हो तेसरो राष्ट्र मंडप संवाद अंतर्गत नेपाल चीन संबंध सहकार का विस्तारित आयाम विषय सत्र को मुख्य वक्ता को रूप में संबोधन करते वहां द्वि देश बीच को

0: Sa terminal de Wesen, Enfield, de Falcon ID.
1: Sağlancı kurbanlar, Kalabiyo, Soundbank, Suçlar Network, Sinaliye. Sağ sarpalarına ava, Bodikos ve Dalip Vabin, Balbalika, Romier, Korsuluk Şakukura, Bodikos ve Balbalika Karın, Eksilipanda, Tere, Balbalika, Mavad, Din, Arkasan. Or Balbalika Kupani, Papa, Sulukşan, Madhani, Lupani, Balbani, इस अनुसार को प्राथमिक कामना नगर को गुनासो दूसरों का वाले को भूमिका का मार्गन बनाने का शांति क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो तरह पची तेरे पंपों के साथ हमें एक बात करनी है
2: सो क्या तो इसको बात करेगा खाली मैं अगर मैं एक जंप कर रहा हूँ मैं भाई नहीं मैं चली बी मैं ये जंप को तेरे बाहर उखाने को शुरू कर रहा हूँ कर्म में ऐसा मचे को पूरा मचे को दूर से जाना पड़ रहा है देनी तो तेरे को रामदेव स्टार्टिंग रामसन को यहाँ से तो पास आई जाओ पूरा तीस पूरा तो देखने पड़ेगा बाला इगर को तीन जमा का पैकेट पूरी पसंद साइन नहीं कर रहा तो सब एक प्रशासन ये को पहले जाने की पोस्टर सुना था लेकिन क्यों नहीं पड़ी इसको पुष्टि हुई यार
1: ओके सरकार वालों को भी इसमें बाला बालिका को अधिकार को बना को भी कुछ सुरक्षा को विषय प्राथमिक तमारे को करती हूँ पामु ना या कौन बना
2: तो इन्हें प्रबलित भागो मैं लेकिन सब ये इतने लड़ी हूँ ऊपर ही और प्रेस वगैरह से इस तरह कर ले नए रिसर्च सरकार बन लाइन में ऐसा पर्याप्त साइन अगर इनके भी पता चला ऑफर में था मकर कौन बोला तीस रुपए दी ये उनके तरह नॉर्मल मौसम के सम ये तो सर ये वाला पर कमी का बना इसमें ये भी नहीं थॉप इस पर सरकार का से असल केजी पाली का लेवल इस तरह ये पाव मंत्री ये रसमन कार्य बना रहा सब वाली रसमन कर बना रहे काम को बना रहा बहुत पहले इसमें ये पाव ये बाल बाल का दिखा रहे बना ये हर एक चीज उपलब्ध कर रहा हूँ मैं इस आलम में बाल बाल का को विवरण देखिए विवरण को व्यवस्था को बारे में कुछ नहीं करने में एक भाई को इसमें तो हमें अजय के उपलब्ध शुद्ध साधन का जो सब तैयार कर बाल अधिकार को लागी निर्भर सुरक्षा को लागी थे क्या क्या बात है सर मेरे तो आई तुम इमोशनल सारा इस तरह का तुम वाले आपको कौन सा कार्य तुम वाले बात है तुम वाले ये बोले तो दिखाई नहीं पहले का समझे तुम बात है तो प्राप्त हो जाएगी किस तरह का है संघीय सरकार और पौरे सरकार में इस तरह का तुम मध्य प्रमुख का पहले कौन सा इतना बड़ा सब कौन सा इतना बड़ा किस तरह का है कहाँ तक रहने का रहा इस वजह से और नागरिक संस्था की कैसे सहायता संस्था रू समय से नहीं दिया वो तब पड़ेगा कभी प्रणाली का पड़ेगा उनका दिमाग लगा पड़ेगा उनका दिमाग मारती कभी सुध के लिए किस चीज़ अवस्था में आगे लगवा किस बारे में बोले किस में दिखाई नहीं और प्रोग्राम वाला समस्या में लिया वो कब क्या क्या उसी पर उठा रहे थे दिल का इंतजार कर रहा है इतना इस तरह का मंगलवार को कि अभी बाबरी का रखा था नहीं ऊपर लेकर आए इस तरह तेरे कामों की जोड़ कर रहा है ये मेरा पता लगा था अब ये पढ़ना तो नहीं
1: था तो रात को ना मैं यू विभिन्न जंप कर रहा हूँ तब अपनी मनों सामने ले रहा हूँ और पढ़ी कर रहा था खेरी और ये पूरी तो अपने दिन में भाई पिता खेरी तो उस तरह प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट डिटर्न भाई रखे साथ में कहीं अभी आयो सरकार वाले निकाय को ध्यान दो
2: यस मेरे में बता दो स्कूल प्रकृति आलू को से भावने का थी हमारी बीस तारीख नहीं थे पावर स्टार्ट है अच्छा देना आलू में पावर स्टार्ट होने लगे कि नहीं सुला रहा हूँ नहीं तो हम नहीं मौके भी समय वाला आगे कर रहा हूँ जो आदमी सोया कर रहा हूँ जरूर नहीं पुष्कर युक्त खाने को आया नहीं युक्त को पीछे अब तीस साल को अलग ही पुष्कर युक्त स्वागत है पुष्कर युक्त पर ऐसी क्या क्या आए जाओ रो और तब मैं मार रही हूँ जहाँ ये सच ही मार रही है नदी नहीं है तो पापों और लोगों को बता रही तो साल को क्या बनी अब आगे रात पानी ना मारते नहीं चीजों एक तो बड़ा का पानी को ना मारते पर इसको ना ये जो मैं पत्ते यहाँ से मैं चला रहा पहले दोस्तों की ना अब तू तो अब चल लो छुट्टी दिया रहा तो छुट्टी बना आगे एक इसके बाद ही जाने सोचा मैंने कि ये काम लगे तो स्वास्थ्य में बनी ये सब रात को पूरा पाता बनी हम लोग इधर इस
1: अलिका शांति क्षेत्र राष्ट्रीय अभियान सूचकका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलसँग भएको कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सिआइएनको हेर्न छ बजेको

0: अकाली अकाली जनन अकाली अथवा के बाद काका के बारे में कहा अकाल जिला का समाधान देना भी लड़ते ये अकाली है वो अकाली त्योहार के लिए नहीं है। अब अकाल मतलब क्या हो कहा मुझे है ना शास्त्रीय शब्द रवि बात नहीं करना चाहिए था। अब रवि का मत क्या हो कहा रवि का मत सूर्य हो तो ये सूर्य का मतलब हम सूर्य के ऊर्जा में कलश मन ये ब्रह्मांड का चरण करता अब वो सूर्य है ना हमारा जिनके रूप में सूरज बना रहे थे उस सूरज बना रहने का चरण हमारा ऊर्जा लेकर हमारा पास पाई नहीं लगते ब्रह्मांड पास पाई नहीं लगते इसके पास पाई नहीं लगते हमारा मुकाम हो गए हो गए ना जिनके पास स्वरूप हमारे घर बच्चा हो गए ना पूजा परंपरा ये परम्परा हमारे धर्म में नहीं हो ये परम्परा संसार भर के मूलक मन बदल धर्म में सूर्य देवत्व परम्परा हुई है ना जिनका के रूप मन मंदिर समुद्र के ऊपर
1: समारोह

अभी तक कहीं जाते होंगे सुस्ती और आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास होश अपना कार्य सुरक्षित होश और कोई संकल्प आगे तुरंत नजीरे को सुरक्षा के लिए जानकारी दिन होश।

28, हम फलक 28, हम फलक 27, 29, 41 हो। एक पटक से बात होते हैं, उनका अवश्य दिन लगा धन्यवाद।

समय विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को लगते विश्वास करोस सुरक्षित रखोस और शंका लगे तुरंत नजीक को सुरक्षा करने जानकारी दिवस आपत्ति समस्त

और कोई ऑफिसर हमारे को नहीं खाए। मान लीजिए हमारे के पास पहले तो फिर दूसरे

0: हम प्रतिमा स्वागत चौधरी मौसम तथा विपद को पूर्वानुमान समय में प्राप्त करना आवश्यक पूर्व कार्य कर सके विपद से बिना मानवीय तथा बहुत क्षति न्यूनीकरण कर सके पूर्वानुमान आशा के पात्र जोखिम मूलक वस्तु तथा समुदाय पर समय में सूचना देना सुरक्षित अवसरना आवश्यक सामग्री तय व्यवस्था में करना और उत्तर तथा प्रतिकारी कलाप तैयार करना हो कर से विपद का समय में बिना क्षति कम कर सकना जनाकर करना
1: सबको

0: राज्य उद्धन्त गाईसँग नगरपालिका कर्लाकी स्थानीय तह सुरक्षा निकाय समुदाय तथा सर्वसाधारण बीच समन्वय आवश्यक प्रवचन दिँदा पूर्वानुमान हलचल सूचना न्यूनतम तत्कालकरण चल्न जनाधारमा पूर्ण रूपमा देह गर्न जोड दिएका
1: मौसम

स्वास्थ्य डेवलपमेंट रेडियो कुलवाड़ा एफएम द्वारा सभी पुजारी साथी

0: लेकिन जो था उनसे खुले कर बातचीत कार्योजना समूह तथा पदाधि को फोटो आवश्यक को नवा उसका समूह वितरण कराकर अनुसूची बमोजिम का निवेदन अनुसूची बी बमोजिम का विवरण समूह के निर्णय का प्रतिलिपि दर्ता प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि समूह के छात्र तथा अध्यक्ष का फोटो अध्यक्ष परिवर्तन विभाग सदस्य पूरा संबंधी विवरण पेश कर पड़ना नगर पालिका का निर्वाह नगर पालिका से सूचना पत्र सूचना कुछ ही सात दिन भी रहा आवश्यक कागजात सहित कृषि विकास शाखा वास्तव में कृषि सेवा केंद्र में संपर्क कर समूह दर्ता तथा नवीकरण का प्रक्रिया पूरा कर खर्च कर रहा
1: आस्थाहरू समुदायमा प्रमाणिक प्रमाण हुनेबाट पटौकाद्वारा प्रमाणिक पर्व मनाइँदा प्रचलन रहिरहेका अठमाणिक पर्व थारू समुदायका एकान्त मौलिक पर्व अठमाणिक पर्वमा थारू जाति र महाभारतका प्रमुख पात्र पाँच पाण्डव मध्येका महिला भैया प्रेम अर्थात् प्रेमाका श्रद्धापूर्वक पूजा आर्चा गर्दा प्रेमाको नामले थारू जाति र पुकारका थारू समुदायमा पूजा गर्जिता एक समयमा द्रौपदी सहित पाँच पाण्डव प्रसुलेका कार्य बिहारमा पुगेर थारू राजा डङ्गीसर र पाँच पाण्डव बीच ठ्याल घनिष्ठ रहे उहाँ समयमा भीम रोटी पकैदिएर राजा डङ्गीसरका राज्य वर्षा उप आक्रमण गर्दा डङ्गीसरका राज्य उत्तर आक्रमण विलक्षता पैकी साहित्य परिवारको पराक्रमी भीम पोखरा पियसला डङ्गीसरण पक्षसे लडाई गरेका शत्रुलाई पराजित गर्दा उहाँ विजयी उत्सवका रूपमा आज तीन थारू समुदाय अठवारी पर्व महिना प्रचलन कायम विगत थारू प्रथम पन्त गाएर राजन अटवार कर आगत छैन हो अटवार आधा दिनसम्म पर्व बैठक खर्चिता पर्व बैठक दिन पूजा सेक्र फल फुल्केर उपभोग खर्चिता दिन दुपहर पाचन खानपान प्लेसमेन्टका प्रणाम तथा भर्खर पाचा सम्हार पिँधाएर पूजा पाठ अर्थात् प्रणाम खर्चिता राखेर परिकार भागमा विभाजन कर्सिता सुत्याङ्गी भाग चेरी पेटी वन्दला कन्द्रासन कुसी स्वरूप तेनाकुरा जैसिका कसे एक भाग प्रदान र उपभोग गर्दा चिरी प्रार्थना कर्सिता भोजनका गहन पास र अग्रासन देह चिना प्रचलन गर्दा यस भाइ पर्वका आफ्नो महत्व मौलिक गर्दा सुनि एकैतोल आस्थाहरू समुदायको पुरुषको घर अगाडि पर्व बेटका मनाइरहेका थारू समुदाय

0: trobada eventuada zanyi kuncari sampeis.
1: Mana bezbikan bedda kovian, rotkandai samadhan. Rotkandai pahai moa tanai kolom dekhai, manishnai bezbikan ya pasar-pasar garne khatnaharo dindirai pardachan. Pasarata, yaktar gara kantalati katai jade manjate, bisusmini ra adhikari kutantai kumatai biswas garnos. Apna kata, surachit raknohos. Rokuni sanka lagita, turuntar rajimi ko suracha karmilai jankari dinuhos. आपकल अवस्था में कब कल होगी? नेपाल प्रवेश एक सुना सुना वार तिहारा तिगरा मानव पेशिकल दर्द को बिगो तिहारा सतत्तर तथा बाल हिटलाइन 10-9-8-9 कल रोज
2: सदस्यों के लिए सुरक्षित समाज मानव बंदी संगठन दस नए कुशल
1: हमें मिले मात्र रूप से चाव मानव पेश बिखर पड़ा आखिर यूएस को खबर प्लांट इंटरनेशनल नेपाल को साझेदारी का जिला प्रशासन कार्यालय प्रतिबद्ध

0: करने को डीएनए नमूना और सैंपल बाटा निकालने को नमूना मिलाएर पहचान करने प्रक्रिया अहिले विमर्श सीआईएम सँग कुरा गर्दै प्रहरी प्रवक्ता काफ्रेले भन्नुभयो
1: प्रश्न

0: কিছু দুঃখ টিভিতে কত খালে ভয় তো আমি
1: यसमा भिटामिन खनिज फाइबर र प्रोटिन पर्याप्त नहुने भएका कारण शरीरलाई आवश्यक पोषण

0: स्वस्थता एवं स्वस्थ संतान को गर्भावस्था और स्तनपान खाना का संतान नियमित रूप में आयरन कैल्शियम खाने से कराई स्वस्थता एक सुरक्षित परिवार
1: रेडियो के द्वारा संदेश।

सुनसानी के घर में बड़ा मजा था। नंबर वन सुनसानी के घर में तैयार करो, और अनुसार दोनों की मनी खाई। मनी दीजिए

0: चेतन मुलायमा अंतर्गत छोड़ने से थी तेरा छोड़ने से रहा वो अंतर्गत दृश्य रहते तेरा सिद्धि से चल रहा है
1: यार पांच लाइन बुटो जो है सर क्या कर रहे हैं जाता है जाओ तो पहले पांच लाइन का तो रहता है नकली पांच लाइन बुटो जो है सर के कुछ लगा दी
2: निशाना रोग मुझे बच्ची स्वस्थ जीवन अपने
1: निशाना रोग छुट्ट बनाए ध्यान दिलवीर जीवन खत्म हुई
2: स्वस्थ भी खाना खाई व्यायाम स्वच्छ करी
1: तुमना पान मदिरा मछली तुम रही खराब खराब देह बन करी
2: आज की मेरे कार्य जीवन होता निशाना रोग मुझे बच्ची स्वस्थ जीवन अपने
3: रेडियो गुरुवार रेडियो गुरुवार सही मजा ही संदेश

छात्र चाहते गुरु बाबा चाहिए पतन और विवाह गीत राम के मोहन के कारण गीत हमने